0: गला क्रिक निरिया कसना पैसा आप मैं सेवा करता के कायमान नानक जिसनो लगा दिसमले लगा सो प्रवान महला दूजा
1: जो जी हो सो दुए मुख कहवा

जियो मैंने सब तेरा कहना न के सब तेरी वड़ियाई वर कहना न के सब तेरी वड़ियाई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

रखनी। दर्शन कौर जी 200 रुपये लंगरां विच हाजिर कर दे। देह अरोगता सुख शांति परिवार की चढ़दी कला रखनी। स्वर्गवासी कमलजीत कौर, स्वर्गवासी सरदार दौलत सिंह जी कराबीन, आत्मक शांति लई परिवार विच लंगरां विच माया हाजिर कर दे। पातशाह कृपा करना, स्वर्गी नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना। पिछे परिवार की चढ़दी कला रखनी। जन्म दिन दे खुशियां वजों गुरप्रीत सिंह हरभजन सिंह जी भोसी वाले लंगरां विच बेअंत माया हाजिर कर दे। पातशाह कृपा करना, दीर्घ आयु की दात गुरसिखी जीवन बख्शना। चढ़दी कला बख्शनी। एम स्टाइल रिटेल्स कारोबार की चढ़दी कला लई लंगरां विच 1100 रुपये हाजिर कर दे। पातशाह कृपा करना, कारोबार की चढ़दी कला रखनी। परिवार विच सुख शांति बख्शनी। प्रिस्टीन पब्लिक स्कूल लोपोके 1100 रुपये लंगरां विच हाजिर कर दे। पातशाह कृपा करना, स्कूल की चढ़दी कला रखनी। सेवकां नूं गुरसिखी जीवन बख्शना। यात्रा सफली करनी। जन्म

हे निमाना दे माना सतगुर नितालां दे ताल नी उठिया जी ओटनी आसरे दे आसरे गुरगरीब ने वाजी आप जी दा जरूर कीर्तन करदे हां या सबद बैठा जरूर सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना मैं पवलो सबद बैठा जरूर सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज जी सपना दिल खिलावणी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा बोला सुको सबद प्यारियो जन्म मर किटे मुख जी सदा सुखी नानक सिमरत करामक ने मोहल्ला

जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जाप हर भव जल तरना बेसुमार अथाह अगनत अतुला ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोला ज्यो बुलावहु

सक उभारा खौफट औ पहुरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुने आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी।

0: तीन लोग जाए जाए करे रे नाम से दोहरा सगल द्वार को छाड़ गए गयो द्वारो द्वार बाह गए की लाज अस गोविंद दास द्वार दोहरा राज करेगा खालसा के रहना को एक बार हो सब लंगे बच्चे सुन जो दोहरा उठ गई सभा मलेच्छ की कर कूड़ा पासार डंका बाजे फतेह का निकल अवतार चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भाव सुभंग सरदास दुखते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूप सदा
1: देख एक फतन सुन अपने नानक गुरु गोविंद सिंह श्री काल प्रभु जी सहाय दरबार में गुरु दरबार।

जी गुरु गरीब निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दे हाजरी पर गुरु की संगत वालों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करते हुए बेनती मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु अपना कृपा देर नाम सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा।

एक ज्ञान के विहीन छेन कह सके तरत है। भूत बन चारे छित छौना सबे दूधा धारी पौन के आहारी सोब जंग जानियत है। दृढ़ के बछैया धन लोभ के तजैया तित कौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंच की बढ़ैया देत बकला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जते बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे असना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कह नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदिस फिरैया तैत भूत कह पछानी है। जल के तरय को गंगेरी सी कहत जग आग के फसैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को।

नाथ गुजर गोपाल सब देन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न दाहे जाके रख रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सत्य साजे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम

नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सो नाराज पव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से नेद चारी सनत कुमार से तपसन अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण के ते वेद यो पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोर दी मदार कित्ते असुनी कुमार कित्ते अंसा अवतार कित्ते काल बस भय है। पीर यो पिगंबर कित्ते गने ना परत ते भूमि हित होए के फेर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप औदलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान बुझ दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट बेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस काओ का भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सो तो ना डंडौत अस डांग अथ तीस काओ। कहां भयो रोगी जो पे डर रहे उर्द मुख मन ते न मुंड ने हरायो अद ईस काओ। कामना अधीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस काओ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सुख सौ। आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूख सौ। कहां भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षण सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कुसाओ। कामना अधीन काम क्रोध में प्रभी ने एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत शूर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जो किया बैरागी बन कबू संन्यास भेष बन कह दिखावई। कहूँ पवन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल कुंचर औका अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे काल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर डाक ठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहते जो पे पाई है तापना तो तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पे पायत जाप देव पूजना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरते गत राण की परत कर पताल के बस क्यों भुजंग न तरत है। कहू भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीब सोई राज कर रहीम हुई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो। एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो। देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आब को रलाव है। अल्लाह अफेक सोई पुरान यो कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केत नाभ बीच अच पछ को करेंगे भज के तक प्रत्यच हो पच।

तेज ज्यों तेज मैं अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे जड़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी खस हारे चंदन लगाए हारे जुआ चार बूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मडली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित

ग्रहण कहूँ देह दुखं कहूँ औखति रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जाच कंद्रव के नर कहानी कहूँ राजसी सादगी तामसी हों कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हों कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हों कहूँ जाच विद्या धरे मानवी हों कहूँ राजसी हों कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की वृष्ट की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मत्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं।

कहूँ सुत से खंगहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ ज्वाल स्वरूप जरा रहत देहंग कहूँ नेह देहंग कहूँ त्याग ग्रहंग कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ।

तेज अनकुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान।

काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कते जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध्य पावक चुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोग काब कथत कते कई अग्न होत्र कई पवन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भच्छ नहीं तब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधरा भरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगयाद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धरम कई देश देश भाखर डंत कई देश विद्या बड़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र स्मृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग

जय जम पह जो कण जू हजुअंग भैगम बह मेर बयाल भुवंग तप तापल सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप।

छत्री छत्र चितं जेह राग न रेग न रोग वणं जेह द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रच्यो दस जार करी नवखंड सच्यो रज तामस तेज तेज कियो अनुपद आप प्रचंड लियो श्री सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्री जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नरपाल विपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद्भु

नर नारण पुंसक जह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गजबाज रथादिक बांध गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि बन जास कियो फल।

भूत छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे सोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन।

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अदोग दाग दग है, अभूत भ्रम भेक है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेक से गेक है, सदीव विश्ववरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्ववरण है, जिमी जमान के विगे सदीव करम भरम है, अद्वैग है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख न मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराने अवपुराण नीत नीत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न ब्रह्म में बताइए, गंज आदि देव है कहो सु कैस पाइये, जिमी जमान के विगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान है।

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साको कुमार है न ने है न गे है न दे को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न

न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेद है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंक है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज।

है प्रमात है, न सीत है, न सूच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरक को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अपरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, वली रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात।

वेखी है न करम है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति जपस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानी है सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात ना ताज जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर बिखे रमयो जय।

जस किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार ही शिव शक्र ओमुखचार सर्व सबद बद मुरते अताप जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जस गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिके विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी रवि कर ब्रह्म से एक स्वरूप।

जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गौर के नाधीन सर्व सपत पतार के दर्जानिये जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सफे सुर विरोध दानो सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकव गर्त गाड़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब देव दानो मूढ़ मानो जश न जाने जेब भूत भव भवान।

पार भूमका जले तले महमानीय जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आद रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड, भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार, आद देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रा।

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत बे मुखचार आद अंतरा मध जाको भूत भव भवान सत दुआ प्रत्या कलयुग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महा मुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट।

एक समय श्री आत्मा उछरियो मत्स्यो बहन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विध तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा सृष्ट को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा जीतव कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुकुटा को मूढ़ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जुद है कवन कवन पाप का धर्म कवन जोग को भोग है।

सुरमर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विते धूम राज विदुन सन प्रलय प्रजुन संजय।

सुर नर प्रतिपारण पद दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय उसी मैं का सुर मर्दन बेसो विध्वंस सृष्ट करे दामनी प्रकाशे अंतरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दोष प्रतर खण पितल तले अष्टायद बाहन बोलने वाहन संत पनाहन गुड़ गते जय जय उसी मैं का सुर मर्दन आद अनाथ अगाध प्रते दुख दोग प्रवचन से वग रचन संत प्रदर्शन शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दोष प्रदा है अर्दल गा है दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय उसी मैं का सुर मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली जोत जतीली तुंद मते अष्टायद जमकण सस्र जमकण दामिन दमकण आद ब्रते डुक डुकी दमंके बाख बबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय उसी मैं खा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड

करुणा निधान कारण स्वरूप जे जगत ज्ञान नहीं रंगा रूप स्वरूप के चले नहीं करेंगे काल रूप जे जे संबंधी करनी पार और जन में नहीं करत स्वरूप बुद्धं का बड़ा जो रंग रूप जे रूप वे करेंगे पंगर आत्मा जे उपज ते जे ने भी नहीं काम करता जब ते में नहीं भी बनता ना ब्रह्म जे ने जे में सीधे ना उच्चारण दो ना जे ने जाने रे पर पात्र नहीं ना जो जाता होता परमात्मा की ना तो करता होता कई कोट इंद्र जे मान हार कई कोट रुक दे किया द्वार दे वेद क्या सुन मान के नद पर ने बिन बिन सदन मचरंत जन ने सदन मचरंत प्रसाद।

वेद पुराण कते पुराण हासे वेद पुराण कते पुराण प्रेम प्रभाव न पद संगे को पद्रे प्रभाव रे आज अनंत का बताए सो भूत भगत भगवान है सो भूत न न मा भगत है सो कृष्ण करत है लोग न के करत है तंत्र मा तंत्र मा भरता प्रभु है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मा पद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोध

ਆਵੇ ਖੋਜ ਥਕੇ ਸਭ ਹੀ ਖੁਜਿਆ ਸੁਰ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨੰਦ ਸੇ ਰੁਮ ਨਾਰਿਕ ਸੇ ਸਭ ਹੂ ਮਿਲ ਗਾਯੋ ਵੇਦ ਗਤੇ ਵਨ ਭੇਦ ਲਖਿਓ ਸਭ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਯੋ पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निरपान सब पचहारे भेद न पाए सके हो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे याद अनाद अगाद अवेगद वैख जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोड करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्य के चलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ताके दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार पावे।

फरा के फिरंगी माने कंधारी को रेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मराठा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैत नंगी पहचाने धर्म धाम है। बंगाली फिर हंग के फिरंगा देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेल पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीर मशीन के शीस न्यावते बते आए दोख देह के दलत है। जिन्हें तोय जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू बे नदीन सादा दीन कहियत है। पाई है अपार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचत ताहि चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते सस राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पे अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूं न जाद जागी बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सुचटा के अनुमानी है। तेज हूं कुतंत्र है के राजसी कुजंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूं कुतार है के राजसी कुसार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन कुभूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के वासी है। जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है।

गोपार जगु की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल विद्यावे पूर्वी न पार पावे असत अनास है। देवन को देव महादेव उनके देव है। निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रभु।

सचे पातशाह जीओ महाराज आप जी दे पावन पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचलनगढ़ साहब जी विखे शामा दे दीवान सजाए गए हन। सजे हुए पावन दीवाना दे विच गुर इतिहास दियां कथा विचारां होईयां कथा विचारां करदियां बेअंत गलतियां हो गईयां जी माफी बख्शनियां के तो समताईयां संगतां दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करदियां जो जी आप जी के द्वारे आवे सो सदा ही राजी प्रसन्न जावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे।

संकेत जगत के नाथा, दुद्धिमान सौ दौवर कर काठ दयो असदुज नर नाहर, पुनरा छसका काटा सीसा, श्री असकेत जगत के ईसा, पोहपन ब्रिष्ट गगनते भई, सभैन आन बधाई दई, धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब नवाजा, अखल भवन के सृजन हारे, दास जान मोहल हो उबारे, कभी उबाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दरछा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सख सभय कर तारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संघरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सत्र हमारे मारिय, आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जो करिय हो रच्छा, राख लेहो मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेवगुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो, घड़ घड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान, जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देहे अपारा, जब आ करख करत हों कब हूँ, तुम मैं मलत दे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, नरंकार नरबकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महा मूढ़ कश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदास, निरंकार का छीनत नह भव, आप आपनी बुद है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखान जाए पसारा, कह पिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्भज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं समट भयो संकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो।
दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिया है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांस ते ताहीं उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारत दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दहल हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अजधुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशद फल पावे सोई, दुख नात सह व्यापत कोई। अडल

कह चौपाई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद विचारे।

मोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भगत ने सुर्ग वास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज सकै न कोई सम सतरै सहस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौल हो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन।

साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारे हो, चाली मुक्ते हो, सर्ब शहीदो मुरीदो, सचियारे हो, प्यारे हो, सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सर्व समु खालसे जी की अरदास, श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पत का राखा, आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेख फते, चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल रहे, धर्म का जयकार, खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब, अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन ददार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारण जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बौली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान, दर्शन ददार मिले बोलो जी। थम जी, ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक देहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर, दिल्ली में शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन ददार मिले बोलो जी। भकौड़ साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, ऋण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगंजी जी, नानक जीरा जी, शिकार घाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, माल्टेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान, दर्शन ददार मिले बोलो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारिया, निशान साहिबां संजुगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन ददार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज, अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के अजूर अमृतमयी शब्द बाणी, कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे बंद होण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत काबला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नक देकर हक देकर धर्मा दे थाडे धर्मा दे थाडे धर्मा तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे दर्शोली की वार सोल हो टल गुरु से मन जन्म जन्म दी सजन सच्चा सो जिस पास बैठे सो

चित कृपा करी जगदी सर जगदी सर सब हर हर सब जस त्यायो सो त्यायो जन नानक कौ हर तिनके स्वामी दुख हौ मैं रोग गवायो किम किंचित कृपा करी जगदी सर जगदी सर सब हर हर हर जस त्यायो जो त्यायो जन नानक कौ हर तिनके स्वामी दुख हौ मैं रोग गवायो।

0: पान अजान कुठार अजान कुठार तन कैक कीन प्रहार कीन प्रहार पट जूझ गयो पट सहजार सहजार कर कोप कल अवतार कल अवतार गह पान अजान कुठार अजान कुठार तन कैक कीन प्रहार कीन प्रहार पट जूझ गयो पट सहजार सहजार
1: वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय ज

हम सतुआर पुत्र पाप विचार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार हम चार

लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां